0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work,

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: Get ready to move.
11: It's all about the beat.
12: Wow, FM.
13: Only Tune Super Hit Channel.
14: Says on 97.1 FM.
15: Zabardast hits.
16: Music never sounded better.
17: Says on 97.1 FM.
18: I love it.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
5: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ.
6: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
6: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
6: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
5: AMH सॉलिसिटर्स. और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे. सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने.
6: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
5: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
6: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
5: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने. मुफ्ता मशवरा लो जी.
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
10: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
11: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
13: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शान

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

0: सितम को देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क।
1: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: Hits.
11: Music never sounded better.
5: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.
12: This is a public service announcement.
13: Everybody. The station.
14: That plays
15: foot tapping music.
16: Fazan 97.1 FM.
17: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए।
18: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी वो भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट,
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक,
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ये नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beat.
3: Wow,
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.
6: Zabardast hits.
7: Music never sounded better.
8: Fizz on 97.1 FM.
7: I love it.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
3: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
2: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
3: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
2: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
5: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
6: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
5: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
6: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
5: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
6: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
5: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
6: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
5: टेस्ट भी वाइब भी।
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats. Wow,
8: Only Tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.

गुड मॉर्निंग नॉटिंघम की खूबसूरत से सफर में एक बार फिर से जनाब, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आपके फहवालक मागंगमागा सुगम सुगम मानु केम छो बोन जो और की हाल चाल है मेरा तितवाड़ा।

कोट ऑफ द डे में एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि आज की जनाब कोट ऑफ द डे है बर्दाश्त, टॉलरेंस। जनाब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बेयर किस तरह करते हैं किसी चीज को। जो बर्दाश्त करने का फन जानता हो वो शख्स जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हारता, जंग अपने से हो या गैरों से। अपनों से यहां पे मुराद क्या है, ये विशेष टिप्पणी थी आज की, ये विचार थी, ये सोच थी जो मैं आपकी सोच के साथ शेयर करना चाहता था। और ये सोचना चाहता था कि आप लोग भी वैसे ही सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूं, जैसे कोई सियाना बंदा सोचता है। डेफिनेटली आपने सियाना बंदा सोचा और फिर मुझे देखा और मेरा एक इमेजिनेशन खाका आपने अपने जहन में बनाया। बिल्कुल जनाब, अपनों से बात यह है कि आपके ऐसे नहीं कोई अजीज़ो अकारब। आजकल के दौर में हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा ये ट्रेंड चल रहा है कि हम अपनों को सबसे पहले ना महाजराई में अपने दुश्मनों की जगह पर रखते हैं और ये सोचते हैं कि यार हमारे पास जो अपने हैं वो ही हमारा सबसे बड़ा काम खराब करने वाले हैं। दम द्रूद ताकत वीज सब कुछ चलता है, हर जगह पे चलता है, कोई जंतर मंतर चल रहा है कहीं पे, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनों से जंग कौन सी जंग होती है, जो आपके अपने अंदर, जो आपका अपना कॉन्शियस है, जो आपका अपना ज़मीर है, जो आपका अपना एक हमजाद है, ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको कभी कुछ करने नहीं देती। बिल्कुल जहाँ मुझे भी सुबह सुबह वो पर्सनैलिटी मिलती है जब बिस्तर से उठ के स्टूडियो में आना होता है और इस मौसम के अंदर वॉक करके आना या फिर ड्राइव करके, जैसे भी कैसे भी आप 97.1 FM को ट्यून करते हुए सुनने के लिए जब आप गुड मॉर्निंग नॉटिंगहम के लिए पहुंचते हैं, तो उससे पहले मुझे काफ़ी सारी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, काफ़ी सारे जोखिम काटने पड़ते हैं। उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा होता है कि नहीं यार अब जाके प्रोग्राम तो करना पड़ेगा। नहीं जनाब, 0115-7100971 ये वो नंबर है जो नंबर मुझे आपकी याद दिलाता है, आपको मेरी याद दिलाता है। तो मुझे एहसास होता है कि कोई ना कोई कोई तो ऐसा भूला भटका मुझे मैसेज करेगा, जैसा कि आप लोगों के मैसेजेस आते हैं। लेकिन मैं आज भी मैसेजेस पढ़ नहीं पाया, इसलिए खुदारा आपसे गुजारिश ये है कि भगवान के लिए बाबा जी की मेहर आप पे हो और ऊपर वाले का करम हो। जनाब जहाँ भी हैं जैसे भी हैं, अपने आप से जो जंग है उसको आपने कभी नहीं हारना। बर्दाश्त आप कर लेंगे, बर्दाश्त मुख्तलिफ चीज़ों पे होती है, कभी फाइनेंशियल सेटलमेंट पे होती है, कभी आपकी रकमानियत पे होती है, कभी आपके ऐसे अज़ाब पे होती है जो अज़ाब आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर लोग हमें मिलते जाएं, लोग हमें चाहने लगें, लोग हमसे प्यार मोहब्बत और बहुत ज़्यादा इश्क करना शुरू कर दें, तो फिर तो जनाब आपसे गुजारिश ये है कि फिर बर्दाश्त आपको ऐसे करनी पड़ेगी जैसे कूट कूट के नहीं ठूस ठूस के भरी होती है। तो जब बर्दाश्त इन लोगों में मौजूद होती है, वो बर्दाश्त का मादा हमेशा अपने पास रखते हैं। किसी की बात को सुनना, टॉलरेट करना, पेशेंस दिखाना, इस चीज़ को बेसिकली तरक्की की वो राह तस्लीम किया जाता है, जिसपे बड़े बड़े लेजेंड यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े लेजेंड जो हैं, आपके जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं जिनको आप कामयाब समझते हैं। अच्छा, आप कामयाबी डिफरेंट थिंग, सक्सेसफुल एक डिफरेंट चीज़ है, उस चीज़ को आप मुख्तलिफ जगहों पर मैनेज कर सकते हैं। कामयाबी जो होती है इंसान के बस की बात नहीं होती, ये कर्म होता है, उसके साथ साथ मेहनत होती है। जो किस्मत है वो लोहे कलम पे आपकी एक बार लिखी गई, लोहे महफूज पे महफूज होगी, उसके बाद आप उसको दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपने ज़मीर के जागने से, अपने कॉन्शियस से मेहनत करने के बाद उस कोशिश को, उस काविश को मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। और ये बर्दाश्त का ही एक ऐसा मादा है जो मेहनत करने में आपकी बड़ी हेल्प करता है, फिर वो किस्मत आप तब्दील करते हैं जो लोहे महफूज पे उस खुदा बुजुर्गों बरतर की जात ने लिख दी है। और लिखने के बाद इंसान को यह भी बताया है कि अब तुमने जो कुछ करना है उसका सिला मैंने तुम्हें देना है, यानी कि मेहनत, यानी कि उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए आप लोग भी मेरे साथ रहें, मेहनत भी करते रहें। कुछ न्यू ट्रैक्स भी मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी देर मेरे साथ रहना पड़ेगा। इंजॉय कीजिए ट्रैक्स, मैं भी आपके साथ हूं, गपशप भी ट्रैक्स के दरमियान आपके साथ रहेगी।

नहीं जी, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, लेकिन जो लोग आपसे रूठे हैं उनको मना लीजिए कि लॉन्ग ड्राइव में आप चलते हुए सुन रहे हैं 97.1 FM को आपने ट्यून किया है, तो आपसे गुजारिश है कि फिर आपने ट्यून अप किए रखना है। इसके अलावा जितने भी हमारे ऐसे अहबाब जो हमें मोबाइल पे सुनना चाहते हैं 97.1 FM या डैप पे आप फजा के नाम से सर्च करने के बाद भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपसे गुजारिश है कि आप जनाब जाएंगे गूगल स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल और एक खूबसूरत से पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर में फजा लिखा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

जी तो लिसनर्स, वेलकम बैक। रेडियो 97.1 एफएम लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम। मैं आपको दिल की हर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा और आपका जो वक्त है, जो समय है, वो हमें हमेशा बांध के रखता है, और समय का जो धारा है वो लेके आप लोग चलते हैं, क्योंकि आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं। और आपसे गुजारिश है कि जो लोग ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट है, बड़ी मोदबाना सी, मासूमाना सी रिक्वेस्ट ये है कि ऑलवेज फास्ट इन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। लेकिन इस मौसम में, अरे मौसम की सूरत हाल एक बार फिर मैं आपको बताते चलूँ। प्रोग्राम के स्टार्ट में तो मैंने आपसे डिस्कस किया, लेकिन इस वक्त क्या मौसम की सूरत हाल है जनाब? ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल ये है कि हमारे नॉटिंघम शहर का टेम्परेचर इस वक्त 9 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 16 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। तो लें जनाब, बाबा जी आपके सामने हाजिर हैं। कहा था ना 3 दिन पहले कि हम 30 को टच करने वाले हैं। बड़े बड़े ऐसे लोग, ऐसे महारथी मेरे सामने आए थे जिन्होंने ये कहा था कि नहीं हम 30 को टच नहीं करेंगे। जनाब आपसे गुजारिश ये है कि कल हम 30 को टच भी कर लेंगे, और परसों हम फिर 24, 23, 24, 25, 26, 23, और नेक्स्ट ट्यूसडे को, अपकमिंग ट्यूसडे को बारिश के बहुत ज़्यादा इम्कान है। तो जनाब फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल इस वक्त 0% है, और जो लोग रात के हवाले से जानना चाहते हैं आपको बता दें, टुनाइट विल कंटिन्यू टू बी ड्राई विल लार्जली क्लियर स्काइज एंड जस्ट द आउट पैचेस ऑफ क्लाउड। जी बिल्कुल, ओवरऑल आप कह रहे हैं कि ड्राई नाइट आपके साथ रहेगी। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कल आपकी कोई बिजनेस इंपॉर्टेंट मीटिंग है या ओरिएंटेशन है, या आप यहाँ से जाना चाहते हैं, या आप नॉटिंघम शहर से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी पे अपनी मीटिंग कंसर्न करना चाहते हैं, तो बेहतरीन टाइम है। अगर आप बारिश लवर नहीं है तो फिर वेरी गुड, ट्रैवल कीजिए, अपना टाइम बचाइए, ताकि मॉर्निंग में जब आप वहाँ पर पहुँचें तो स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, एक्यूरेट हों, और आप डिलीवर कर सकें एग्जैक्ट वो चीज़ें जो आपके लिए मौजूद हैं, जो आपके लिए ही हैं। तो जनाब स्टे ट्यून्ड फजा 97.1 एफएम, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, दो बंदों का मैसेज आए ना आपके प्रोग्राम के अलावा आपसे रब्ता कैसे किया जाए? प्रोग्राम के अलावा जनाब रब्ता आप रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल पे कर सकते हैं, 115700097, यही वो नंबर है। अगर आप बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर अपनी रिक्वेजिशन हमें भेजिए 115700097 पर ही, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं info@radiofsa.co.uk, ईमेल कर सकते हैं आप events@radiofsa.co.uk, ईमेल कर सकते हैं आप hr@radiofsa.co.uk, ईमेल कर सकते हैं आप zaki@radiofsa.co.uk, ईमेल कर सकते हैं nasrkhan@radiofsa.co.uk। ये जनाब सारे वो हमारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हैं जो आपके पास मौजूद होने चाहिए, अगर आप रब्ता भी करना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से, बाकी ट्रांसमिशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो सिंपल सा आपको बताते चलें, radiofsa.co.uk वेबसाइट है जिस पर आप जाएंगे, विजिट करेंगे, हमारे बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितने ट्रांसमिशन हैं, और जितने हमारे फेसेस हैं वो आपके सामने आएंगे। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, जितने भी हैं, फेसबुक भी, उस पर आप जाके हमारे 97.1 एफएम को सर्च कीजिए ऑफिशियल के नाम से। उसके बाद क्या करेंगे, सर्च करने के बाद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा रहेगा, ये चीज़ आपको पता रहेगी कि आपने उसको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, मैसेज करना है हमें, और एहसास दिलाना है अपने होने का। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

अरे अनफॉर्चुनेटली ट्रैक तो बड़ा मजे का निकला है, लेकिन ट्रैक को एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जब आप ये ट्रैक सुनेंगे ड्राइव करते हुए आपको बहुत मजा आएगा। एक कॉफी का गर्म सा कप अगर इस मौसम में हो जाए, कहते हैं गर्मी गर्मी को मारती है, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, इसलिए आप लोगों ने ट्राई नहीं करना, आप ठंडे मशरूबात यूज कीजिए। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम के खूबसूरत सफर में अपने मेजबान नासिर खान को दीजिए इजाजत। कल रहेगी मुलाकात नई गपशप और नई टॉपिक्स और नए जनाब इंग्रेडिएंट्स के साथ, टॉपिंग्स भी डेफिनेटली होंगी और गुड मॉर्निंग की खूबसूरत डिश को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 एफएम एंड योर होस्ट विल से गुड बाय गुड बाय गुड बाय नॉटिंघम।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

Hello, and a very beautiful, exciting, and breezy morning to all my listeners who are listening me right now. To the listeners, Radio Fazaa 97.1 FM and Dab ke Live Studio se, main hoon aap sabhi ki host, the one and only RJ Zainab Fatima, aur aap sun rahe hain aapka apna pasandida show. Diva Dialogue sirf aur sirf Radio Fazaa 97.1 FM and Dab pe. Jee to listener, jaisa ki hai aap sabhi ko maloom ki Radio Fazaa 97.1 FM and Dab hai wo wahid platform jahan aapko milti hai information, communication aur saath hi saath entertainment. So, the listeners puri koshish karenge ki is information, communication and entertainment ke pattern ko leke chale hum aur aap ab se leke theek 2 ghante tak, yani theek 10 baje se leke theek 12 baje tak hum aur aap rahenge saath saath. So, puri koshish hogi ki milkar banaye aapke aaj ke is din ko aur bhi zyada khoobsurat, meaningful aur productive. So dear listeners, अगर अभी तक आपने अपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज कर लिया है तो well and good, लेकिन अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज नहीं किया तो it's the time and it's the moment आप अपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज करें. किस तरह से आगाज करना है कि आपको सबसे पहले छोड़ना है बिस्तर को, अपनी सुस्ती और काहिली से बाहर आना है. सो जैसे ही आप सुस्ती और काहिली से आ जाएंगे बाहर तो आपका माइंड फ्रेश होगा, एक्टिव होगा एंड देन यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर न्यू डे. वेल लिसनर्स, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इस प्लानिंग को करने में कि किस तरह से आपने आज के इस खूबसूरत दिन को मजीद प्रोडक्टिव बनाना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 01157100971 जो कि है मेरा और आपका राब्ते का नंबर, यानी रेडियो फजा 97.1 FM के स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर. सो अगर आपको आ रही है दिक्कत ये सोचने में कि किस तरह से इस खूबसूरत दिन का आगाज किया जाए, तो आप सिंपली इस नंबर पर जाके मुझसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से एक नई चीज़ का स्टार्टअप लें. क्योंकि बाज़ुकात ऐसा होता है कि इंसान का माइंड बिल्कुल हो जाता है ब्लैंक और उसे ज़रूरत होती है एक अच्छे पीस ऑफ एडवाइस की. सो मैं ज़रूर आपको एक बहुत ही अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दूंगी. साथ ही साथ आप मुझे बता सकते हैं कि आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या करने का सोच रहे हैं और क्या करने के इरादे हैं. इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताती चलती हूँ कि www.radiofaza97.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं. सो ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM की फैमिली का हिस्सा. और आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में है आने वाला. सो रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी तमाम तर मालूमात आपको मिलेगी इस वेबसाइट पे, और साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना.

तो लिसनर्स, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सिंपली जाना है गूगल स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पे, वहाँ जाके आपको सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, आप सभी बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी यानी रेडियो फजा 97.1 FM की एप्लीकेशन। सो आप बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं इंस्टॉल, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, डेली की अपडेट्स मिलती रहें और आपका दिन बने और भी ज़्यादा खूबसूरत। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो अब भी अगर आपको कोई भी है दिक्कत या है कोई भी कंफ्यूजन, सो बिना कुछ सोचे समझे हमसे रابطہ कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम तरह समस्याओं को दूर करें। वेल, इसी के साथ लिसनर्स इतना कहूंगी कि चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से दिन को। और जैसे कि है आज ट्यूसडे, और ट्यूसडे के हवाले से कहा जाता है कि मंडे को तो लोग अक्सर इस तरह से देखते हैं कि ओह अगेन मंडे, यानी कि फिर से दोबारा ऑफिस जाना होगा, कामकाज करने होंगे, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि संडे को कितना मज़ा आ रहा था और अब फिर से स्कूल जाना होगा, यूनिवर्सिटी जाना होगा एंड कॉलेज जाना होगा। सो ट्यूसडे को आकर जो इंसान के माइंड में ये सब थॉट्स चल रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक थोड़े से कम हो जाते हैं, और फिर इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ फाइनली जाना तो है, काम तो करना है, क्योंकि ज़िंदगी इस तरह से नहीं चल सकती। सो आई थिंक सो कि ट्यूसडे इज़ मोर बेटर देन मंडे। वेल लिसनर्स, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि आपको मंडे ज़्यादा अच्छा लगता है या अच्छा लगता है ट्यूसडे? सो वैसे अगर देखा जाए तो नाउ आई एम मेच्योर, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हो मंडे या हो संडे, हर दिन एक ही जैसा लगता है मुझे, क्योंकि आई रियलाइज़ कि ज़िंदगी में काम तो फिर करने पड़ते हैं। सो अब मेरी एक रूटीन बन चुकी है, तो अब जब कभी मैं काम ना करूँ तो मुझे तब ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि आज तो करने को कुछ है ही नहीं, और जब मैं कोई ना कोई काम करती रहूँ तो ज़िंदगी बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ चलती है। सो दे लिसनर्स, हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि एक अच्छे खूबसूरत दिन का आगाज़ किस तरह से होता है, एक अच्छे एनर्जेटिक मील के साथ। सो अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो फौरी तौर पर नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट इटसेल्फ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसा कि आजकल का जो मौसम है इतनी ज़्यादा गर्मी होती चली जा रही है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, तो आपको हाइड्रेट रहने के लिए ज़रूरत है एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी तो फिर ब्रेकफास्ट से ही आएगी। सो लाजमी किया करें ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, और इस तरह से आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बनाया करें। सो वेल, बात हो गई बॉडी को एनर्जेटिक बनाने की, सो उसके लिए तो सजेशन मैंने आपको दे दी। अब से बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने मूड को एनर्जेटिक कर सकते हैं, सोल को रिफ्रेश कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको किसी भी एक्सपेंसिव थेरेपी की ज़रूरत नहीं, म्यूज़िक इट्सेल्फ इट्स अ वेरी गुड थेरेपी। सो जब कभी भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि अब मुझे काफ़ी बोरियत हो रही है या फिर ज़िंदगी बहुत बोरिंग लग रही है, सो मैं क्या करती हूँ, मैं सुनती हूँ म्यूज़िक। सो जो थेरेपी मैं यूज़ करती हूँ, क्यों ना अपने सभी लिसनर्स को भी वही थेरेपी सुनाई जाए। सो आइए बोलकर सुनते हैं एक अच्छा सा ट्रैक, ताकि मेरा और आपका, हम सभी का मूड हो जाए रिफ्रेश। सो मूड को करते हैं रिफ्रेश, और इस ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, एंड देन स्टार्ट करते हैं टीवा डायलॉग का ये सफ़र, और बहुत सारी गपशप करेंगे शो में, बहुत सारे चटपटे टॉपिक्स शामिल करेंगे और आपका पसंदीदा म्यूज़िक। सो अभी सुनते हैं फ़िलहाल के लिए ये गाना।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूं आप सभी की होस्ट द वन एंड ओनली आरचे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। सो डियर लिसनर्स, आई थिंक सो अभी तक आप सभी उठ चुके होंगे और आपने बाकायदा तौर पर अपने इस दिन का आगाज कर लिया होगा। सो वो सभी लिसनर्स जो कि इस वक्त घरों से बाहर निकल चुके हैं या फिर हैं ऑफिस की तरफ रवा दवा या हैं रास्ते में, और वो सभी लिसनर जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, सो अगर आप हैं रास्ते में या फिर पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफ़र बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत, सो इस सफ़र को खूबसूरत बनाया जा सकता है किस तरह से, रेडियो फजा 97.1 एफएम के संग। सो डियर लिसनर्स, आप हमें ट्यून कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग किस तरह से, फजा टैप के थ्रू। सो इस तरह से आप हमें ट्यून कर सकते हैं, ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं, आप अपने इस सफ़र को डेस्टिनेशन को खूबसूरत और मेमोरेबल बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है और आप किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस शो में वही सब कुछ प्ले किया जाए जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद है, और साथ ही साथ लिसनर्स आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से मुझे सुन रहे हैं और क्या करते करते सुन रहे हैं। लिसनर्स, अपने इस सफर को खूबसूरत बनाइए, लेकिन ख्याल रखिएगा कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सो सबसे पहले तो बी केयरफुल एंड फोकस ऑन योर ड्राइविंग, क्योंकि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि फुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए ड्राइविंग पे, क्योंकि लाइफ इज वेरी प्रिकॉशियस, और अगर आपका कोई भी एक छोटा सा हल्का सा बुरा कदम उठ जाता है तो वो बन सकता है बहुत बड़े नुकसान का मौजिब। सो आपने बड़े नुकसान का मौजिब नहीं बनना और जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, सो बी केयरफुल और एहतियात से ड्राइविंग कीजिए और जरा आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाएं। सो लिसनर, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा है कि शो में वही गाने प्ले होते हैं जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद हैं, तो अभी अभी हमें एक रिकमेंडेशन मौसूल हुई है। सो हमारी ये लिसनर हैं बहुत प्यारी सी, जिनका कहना है कि उनका फेवरेट गाना शो में शामिल किया जाए, सो क्यों नहीं, जरूर आइए मिलकर सुनते हैं उनका पसंदीदा ट्रैक, एंड देन ट्रैक पर वापसी पे स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेगमेंट।

कैसे तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? सोचिए बात करते हैं कुछ आज जिंदगी के अहम पहलुओं से रिलेटेड। सो अक्सर हम क्या करते हैं, जिंदगी के शोर शराबे और इस भरी दुनिया में अक्सर हम अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। सो हम दूसरों की खुशी के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं और इन सब में खुद को इतना उलझा देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें खुद क्या पसंद है, हमारी नापसंद क्या है और हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीना चाहते हैं। हमें बस क्या चाहिए, दूसरों की एक्सेप्टेंस। सो आज के इस हाथ सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे ही दो यूनिक और थोड़े अलग से कोट जो आपको ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव देंगे। तो टेक अ ब्रीथ, सिट बैक, रिलैक्स करें और आइए चलते हैं आज के फर्स्ट कोट की जाने। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि हम सब किसी न किसी तरह किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते रहते हैं। सोशल मीडिया हो या हो रियल लाइफ, हम दूसरों के जैसे दिखना, उनके जैसे बोलना और समटाइम्स उनके जैसे बिहेव करना चाहते हैं। सो इस बारे में एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर ऑस्कर वाइल्ड का एक बहुत ही यूनिक सा कोट है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसे शो में शामिल किया जाए। सो द कोट इज, बी योरसेल्फ, Everyone else is already taken. So, इस छोटी सी लाइन में एक बहुत ही बड़ा डीप मीनिंग छुपा है, आइए जरा उसको डिस्क्राइब करते हैं। सो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम किसी और की कॉपी बनने के चक्कर में अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को डिफाइन

नहीं कर पाते। सो लिसनर्स, खुदा ने हर एक इंसान के अंदर एक बहुत ही अच्छी सलाहियतें बनाई हैं। हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। अब ज़रूरी नहीं कि जो क्वालिटीज़ आपको दूसरों में दिखाई दे रही हैं वही बेस्ट क्वालिटीज़ हो। हो सकता है कि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हों वो ज़्यादा बेस्ट हों, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आप खुद को पहचानें। लेकिन जब आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, चाहे वो इंसान हो या हो सोशल मीडिया ट्रेंड्स,

ये तो लिसनर्स मैं ये कह रही थी कि जब हम अपनी ऑथेंटिसिटी को छुपा कर दूसरों की कॉपी बनने की कोशिश करते रहते हैं तो आप अपनी असली शान खो देते हैं। लोग आपको पसंद करें या ना करें, आप वही बने जो आप असल में हैं। बी ओरिजिनल, बी रियल, क्योंकि दुनिया को कॉपी की नहीं बल्कि ओरिजिनल वर्जन की जरूरत होती है। सो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट कोट एंड आई होप कि आप सभी को इसका मीनिंग समझ आ चुका होगा। सो बेसिकली कोट ये कहता है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बी ओन योर सेल्फ, खुद पर काम करें और जो क्वालिटीज आप में मौजूद हैं उनको संवारें, उनको निखारें, ना कि आप इस दौड़ में लगे रहें कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा किस तरह के कपड़े पहनता है, दूसरा किस तरह से बात करता है, या फिर आजकल न्यूज़ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। सो वेल, इस खूबसूरत सी इंटेलिजेंट सी बात के साथ शो में शामिल करते हैं एक अदद और म्यूजिकल ट्रैक। सो ये गाना होगा मेरी पसंद का, क्योंकि पिछला गाना हमने शामिल किया था आपकी पसंद का। सो अब आप सुने आरजे ज़ैनब को किस तरह के गाने पसंद हैं। सो आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट तरह का म्यूज़िक ऐड किया जाए। हमेशा हम सुनते हैं वही गाने, तो आज ज़रा सा डिफरेंट, ज़रा सा हटके सो सुनते हैं करण ओजला का कोई अच्छा सा पंजाबी सॉन्ग

सो वेल लिसनर्स, मुझे मिल चुका है एक बहुत ही अच्छा सा गाना एंड आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. तो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक एंड देन स्टार्ट करते हैं अगला कोट.

तो मेरे सभी लिसनर्स, आज के इस खूबसूरत से दो कोट से हमने क्या सबक सीखा? द फर्स्ट इज बी योरसेल्फ। कभी भी किसी की कॉपी मत बने, खुद को हमेशा ओरिजिनल रखें। एंड द नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट योर पीस। अपने मूड, अपने जज्बात का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें। सो ये था हमारा आज का फर्स्ट सेगमेंट। सो वेल, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा, और इस हवाले से या आज के कोट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो सिंपली 0115710971 आप इस नंबर पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सभी क्यूरीज को दूर करूँ, एंड देन आपको दूँ एक अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। वेल, अभी तक हमारे जितने भी मेरे लिसनर्स होंगे ऑफिस तो पहुंच चुके होंगे और कर रहे होंगे अपना काम। सो अगर आपको अभी ऑफिस पे कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो बिल्कुल भी उसे आपने खुद पर हावी नहीं होने देना, क्योंकि हमारा आज का कोड भी यही कहता है।

सो जी लिसनर्स, अभी हमारी एक प्यारी सी लिसनर ने कहा है कि उनका पसंदीदा गाना शो में शामिल किया जाए, तो आइए सुनते हैं उनका पसंदीदा गाना, बल्कि मैं नहीं आप ही, आइए हम सभी मिलकर साथ में सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। सो ट्रैक के उस पार होती है आप सभी से मुलाकात, एंड देन स्टार्ट करते हैं अगला सेगमेंट।

Well, listeners, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? और मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस ड्रामा सीरियल को देखा है। तो पर्सनली एट फर्स्ट तो मैंने इस ड्रामा सीरियल को नहीं देखा था, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा हाइप जब क्रिएट हो गई तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, वाई नॉट देखा जाए। बस यही सब सोच कर मैंने इस ड्रामा सीरियल को स्टार्ट किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स अ रियली अमेजिंग स्टोरी, बहुत अच्छी थी, प्लस एक्टिंग बहुत अच्छी की थी एक्ट्रेस ने। तो अगर आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सीरियल को नहीं देखा, सो मस्ट वॉच, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वर्थ इट है। तो लिसनर्स, इसी के साथ ही डीवा डायलॉग में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो फिलहाल के लिए तो इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट किया जाए, बट आई फील लाइक कि अब जरा कमर्शियल ब्रेक से वापस आकर ही हम स्टार्ट करेंगे आज का द स्पाइस किचन। सो फिलहाल के लिए आप हमारे संग इसी तरह से जुड़े रहें, बंदे रहें, रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून करते रहें, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

वेलकम बैक लिसनर्स, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो डीवर डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। सी तो लिसनर्स एक बार फिर से बताती चलती हूँ, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, यानी कि मेरा और आपका रबते का नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं किस तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है, कौन से टॉपिक्स पे आप बातचीत करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप मुझसे ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। सो हम उन्हीं चीज़ों के मुतालिक बातचीत करेंगे और वही तमाम तर टॉपिक्स शो में शामिल करेंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से बताती चलती हूँ, www.radiofaza.com.uk इट्स अवर ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि आप हमें इस वेबसाइट के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। वो है साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM को बआसानी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर कहीं आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आपने जाना है किसी लंबे सफ़र पर, सो आप ड्राइविंग के दौरान भी हमें सुन सकते हैं, उसके लिए आप हमें फजा डैब के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ये सभी तरीके, यानी कि ये वो तरीके हैं जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो बस इसी तरह से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए और बताते रहिए कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। सॉरी लिसनर्स, हमें आई है इस वक्त एक दैट सॉन्ग रिकमेंडेशन, सो आइए हम प्ले करते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पर होती है आपसे मुलाकात एंड देन स्टार्ट करेंगे आज का नेक्स्ट सेगमेंट।

जी तो लिसनर्स, कैसे लगा आपको ये ट्रैक? आपके पसंदीदा ट्रैक पे इसी तरह से शो में शामिल हो सकते हैं, सो आप हमें बता सकते हैं। सो जी, स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है द स्पाइस किचन। जैसा कि हमेशा की तरह मैं रोज़ लेकर आती हूँ सभी रिवाज के लिए ऐसी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज जो कि हों थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी सी हटके, थोड़ी सी डिफरेंट, बट हो हमारे एशियन टच के साथ, ताकि आपको खाने को मिले बहुत ही अच्छा जायका विद कम इंग्रेडिएंट्स। सो इन तमाम रेसिपीज़ के लिए आपको कुछ भी दिक्कत नहीं करनी पड़ती और ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। सो सिंपली आप अपने घर पर पड़े कुछ ही इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं इंस्टेंटली गुड फूड। जैसा कि हमारे सभी टीवाज में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि हैं वर्किंग वूमेन और डेली बेसिस पर उनको मेरी तरह काम काज करने पड़ते हैं, घर से बाहर निकलना पड़ता है एंड देन जाना पड़ता है ऑफिस। सो आई नो आपके पास बहुत सारा वक्त नहीं होता कि आप एक रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। सो आपकी इन सभी समस्याओं के हल के लिए डेली बेसिस पर मैं लेकर आती हूँ द स्पाइस किचन। सो हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी

सो आज हम ट्राई करेंगे कॉन्टिनेंटल फूड, तो हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, एंड देन एशियन फूड भी. सो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, इट्स अ टर्किश रेसिपी. सो बेसिकली इट्स अ टर्किश रेसिपी जो कि है एक ट्रेडिशनल और बहुत ही ज़्यादा बेसिक रेसिपी. सो इसके लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं वो सभी आपसे शेयर करती हूँ. बट उससे पहले आप जो भी कोई काम कर रहे हैं उस काम को कर दीजिए थोड़ी देर के लिए स्किप और ध्यान से सुनिए, ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट आपसे मिस ना हो जाए. और साथ ही साथ आप ऐसा करें कि नोट डाउन कर लें, अपने पास रख लें कोई कॉपी पेंसिल या फिर नोटबुक, और जैसे जैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ वैसे वैसे आप इनको नोट करते जाएं, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप इसको इसी तरह से प्रॉपरली बना सकें. सो जी आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं, इट्स अ टर्किश चिकन रेसिपी. सो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि तुर्की में बहुत ज़्यादा खाई जाती है. सो आज हम भी ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती. सो जब तक मैं आपसे इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ और जब तक आप अपनी नोटबुक रेडी करते हैं, तब तक के लिए हम सुन लेते हैं एक अच्छा सा ट्रैक. सो सुनते हैं ये ट्रैक एंड देन ट्रैक के उस पार कंटिन्यू करते हैं यहीं से.

तो लिसनर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी. सो इंग्रेडिएंट्स मैं आप सभी से शेयर कर देती हूँ. सो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं उनमें सबसे पहले तो हमें चाहिए 1 kg चिकन थाइस. आप दूसरा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप चिकन विंग्स यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स टोटली योर चॉइस. सो मेरे पास ये वाला चिकन मौजूद था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में बना लिया जाए. द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ 1.5 tablespoon सॉल्ट. वैसे नमक भी हसबे ज़रूरत हसबे जायका आप कर सकते हैं, लेकिन अंदाजे से अगर आप 1 kg चिकन यूज़ कर रहे हैं तो इतना नमक इनफ होगा. अगर आप इससे ज़्यादा क्वान्टिटी करते हैं तो चांसेस है कि नमक ज़्यादा हो सकता है. अगला इंग्रेडिएंट है हमारा 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon ब्लैक पेपर, 1.5 tablespoon चिली फ्लेक्स, 1.5 tablespoon कोलियंडर पाउडर एंड 1.5 tablespoon पेपरिका पाउडर. अच्छा, इस रेसिपी में हम शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट. सो हम 1 tablespoon उसे यूज़ कर लेंगे, साथ ही साथ 2 cup कुकिंग ऑयल और 2 tomatoes, 2 onions और साथ ही साथ 2 से 3 अदद ग्रीन चिलीज और साथ हम यूज़ करेंगे गार्लिक. अच्छा, आपने गार्लिक को साबुत यूज़ करना है, बिल्कुल भी उसका पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि हमारी इस रेसिपी में हमें पेस्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बना रहे हैं एक ऑथेंटिक टर्किश डिश. तो इसका बनाने का तरीका हमारे जो नॉर्मली एशियन फैमिलीज़ में होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो हम इसमें रॉ जिंजर गार्लिक यूज करेंगे. अब से बात करते हैं ये तो उन सब इंग्रेडिएंट्स की जो के थे हमारी रेसिपी में होने वाले इस्तेमाल. अब ज़रा गार्निशिंग की बात कर लेते हैं. सो इस रेसिपी को गार्निश करने के लिए हमें चाहिए रेड बेल पेपर, साथ ही येलो बेल पेपर, कैप्सिकम, अनियंस एंड टोमेटोज. आप कोई से भी टोमेटोज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो छोटे साइज़ के टोमेटोज हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, प्रेजेंटेबल भी लगेंगे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगेंगे. सो वेल, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जिनसे हम बनाएंगे आज की रेसिपी. वेल, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने नोट कर लिए होंगे. जस्ट इन केस अगर कुछ आपसे मिस हो चुका है तो घबराने की कोई बात नहीं. 0115710971. सिंपली आप इस नंबर पर जाकर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी को दूर कर दूंगी.

ये थे सब इंग्रेडिएंट्स जो कि शेयर कर दिए आपसे. अब जरा आगे बढ़ते हैं हम इसके प्रोसीजर की जानिब. सबसे पहले हमने क्या करना है कि तमाम तर वेजीज को अच्छे से कट करके रख लेना है, जिनमें है प्याज, टमाटर और पोटैटोज और साथ ही साथ चिकन. अगर आपके पास चिकन छोटे पीसेस में मौजूद है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो आप चिकन को थोड़ा सा दरमियाने साइज का कट कर लें, क्योंकि मोस्टली थाई पीसेस बड़े होते हैं. हमें इस रेसिपी में छोटे पीसेस चाहिए. इस तरह से आपने सबको कट करके रख लिया. अब आ रही आती है, आपने सबसे पहले चिकन ऐड करना है एक बर्तन में. साथ ही साथ आपने टमाटोज, अनियंस, ग्रीन चिलीज और उसके बाद गार्लिक, जिंजर और साथ ही साथ जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे इंग्रेडिएंट्स में, वो सभी आपने इसमें ऐड कर देने हैं और साथ ही टमाटो पेस्ट. ऐड करने के बाद आप इनको अच्छे से मिक्सअप कर लें. ठीक है, मिक्सअप करने के बाद इनको मैरिनेट करके रख दें तकरीबन एक घंटा के लिए. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप एक घंटे के लिए रख दें, लेकिन अगर टाइम की है कमी तो 20 से 30 मिनट्स भी काफ़ी हैं. इस तरह से आप अच्छी सी मैरिनेशन करें, क्योंकि कोई भी रेसिपी हो मैरिनेशन बहुत ज़रूरी होती है और मैरिनेशन ही बनाती है हर रेसिपी को अच्छा. अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी डिलिशियस हो, तमाम तर स्पाइसेस बैलेंस हो, आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें मैरिनेशन को.

ऐसे ही आपका मैरिनेशन का वक्त हो जाता है कंप्लीट। सो आपने सिंपली इस बर्तन को चूल्हे पर रख देना है और इससे आपने अच्छे से कुक कर लेना है। याद रखिएगा कि आपने इससे बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना, 50% तक आपने इसको कुक करना है, क्योंकि लास्ट में हम इससे माइक्रोवेव भी करेंगे। सो आपने जस्ट 50% तक कुक कर लेना है इस रेसिपी को। सो जैसे ही आपकी रेसिपी 50% तक कुक हो जाए तो साथ ही साथ आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। और याद रखिएगा कि ग्रेवी आपने उतनी ही बनानी है जितनी आपको पसंद हो। सो अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं वाटर, और अगर आपको कम ग्रेवी पसंद है तो कोशिश किया करिएगा कि आप इसको कम ही रखें, ठीक है। सो जैसे ही आपकी रेसिपी 50% तक कुक हो जाए तो अब बारी आती है कि हम इसे निकाल लें एक अच्छे से बर्तन में और इसके ऊपर वो तमाम तर गार्निशिंग की वेजिटेबल्स अच्छे से बारीक चॉप करके ऐड कर दें, ठीक है। सो अब हम बारी बारी तमाम तर जैसे वेजीज को कट करेंगे, कट करने के बाद हम इनको रेसिपी के ऊपर ऐड कर देंगे। इसी दौरान हम कर लेंगे ओवन को गर्म। सो आपने तकरीबन 20 मिनट पहले ओवन को कर लेना है गर्म और 230 डिग्री सेल्सियस तक रखना है टेम्परेचर। सो जैसे ही आपका ओवन हो जाता है गर्म, सो इस रेसिपी को रख दें और 10 से 20 मिनट बाद आपकी ये ऑथेंटिक चिकन रेसिपी हो जाएगी तैयार। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग होगी, प्लस जो आपने इसमें बहुत सारी कलरफुल वेजीज ऐड की हैं तो उसकी वजह से दिखने में तो ये ऑटोमेटिकली ही अच्छी लगेगी, लेकिन खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा जूसी होगी और परफेक्ट बैलेंस स्पाइसेस होंगे। सो लिसनर, 10 से 15 मिनट इंतज़ार के बाद फाइनली टडा हमारी रेसिपी हो गई तैयार। सो अब आप इसको निकाल लीजिए, फैमिली के साथ खाइए, और आप चाहें तो आप इसे किसी भी तरह से खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इनको चावलों के साथ ट्राई करूँ। सो उसके लिए मैंने जल्दी से सिंपल प्लेन राइस बॉयल कर लिए एंड देन इसे मैंने उनके साथ खाया। सो काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है सो आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी लाजमी इस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की रेसिपी सीखनी है, क्या आपको पसंद है। सो कोशिश करूँगी कि अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर वो रेसिपी दूँ। चलो लिसनर्स, इसी के साथ ही सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक एंड ट्रैक से वापसी पे स्टार्ट करेंगे आज की नेक्स्ट रेसिपी।

0: Are there moments to bleak ca visare de frantic? Frantic. Are there moments to bleak ca visare?
1: Well listeners, इसी के साथ ही शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार. तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड डेप के संग जुड़े रहिए, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरसी ज़ैनब फातिमा। आप सुन रही है टीवी डायलॉग और आपको और मुझे साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा से भी ज़्यादा। सो बस अब हमारे शो को भी कुछ ही वक्त रह गया है। सो अब से बात करते हैं थोड़ा सा लाइफ से रिलेटेड, डेली बेसिस से रिलेटेड। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो रहा है और इन्हीं तब्दीलियों के सबब जैसे ही आपको बताया कि वेदर चेंज होता है तो इंसान की जो स्किन होती है वो भी काफ़ी हद तक इन सब से अफेक्ट होती है। सो जैसे ही अचानक से जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो आप फील करते हो कि स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है। इसी तरह से जब अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ यूँ होता है कि जो आपकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा डल लगती है, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ भी कर ले, मेकअप भी कर ले, जब तक आपकी स्किन खूबसूरत प्रिटी नहीं दिखेगी तब तक आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन सकते। सो अ रियल डिवा इट्सेल्फ वो होती है जिसकी स्किन भी उसी की तरह ग्लो करती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप परफेक्ट बने सो आपको हर तरह से खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो चाहे वो करियर की बात या फिर हो आपकी स्किन की। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना सभी डिवास के लिए लेकर आई जाएं कुछ अच्छी सी ब्यूटी टिप्स जो कि उनकी स्किन को हाइड्रेट करेंगी, साथ ही साथ स्किन में वापस ग्लो लेकर आएंगी। सो द बेस्ट थिंग ऑफ दीज रेमेडीज इज़ के ये टोटली ऑर्गेनिक है। सो आपको बिल्कुल भी कोई हार्श केमिकल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सो माय लवली डिवा स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट ब्यूटी टिप। इट्स अ DIY मास्क जो कि आपकी स्किन को ना सिर्फ इम्प्रूव करेगा बल्कि अगर धूप की वजह से हो चुकी है बहुत सारी टैनिंग तो उसको भी मिटाएगा। सो ये मास्क मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और पर्सनली मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी तमाम तर लिसनर्स के साथ भी शेयर किया जाए। सो इस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए 3 से 4 इन्ग्रीडियंट जो कि इजिली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। सो सबसे पहले आपको चाहिए बेसन। बेसन इट्सेल्फ इज़ अ रियली गुड इंग्रेडिएंट। अगर कहीं पर भी बात की जाए कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि इतना एक्सपेंसिव भी ना हो लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा ग्लो दे, आपकी स्किन को बहुत प्रिटी खूबसूरत बनाए, तो बेसन इज़ नंबर 1 इंग्रेडिएंट। तो बेसन बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो सबसे पहले आपको चाहिए बेसन। बेसन के साथ आपको चाहिए मिल्क। बेसन की आपने ले लेनी है 2 टेबलस्पून और मिल्क की आपने ले लेनी है 3 to 4 टेबलस्पून, क्योंकि आपने याद रखना है कि जितना आप बेसन यूज़ करेंगे उससे थोड़ी सी क्वांटिटी मिल्क ज़्यादा होना चाहिए तभी मिलकर वो एक अच्छा सा बैटर बन सकता है। सो आपने ले लेना है बेसन। बेसन के साथ ही आपने ले लेना है मिल्क। मिल्क के साथ आपने लेना है 1 टेबलस्पून योगर्ट। अच्छा, योगर्ट जो है वो बेसिकली स्किन को हाइड्रेट करता है और अगर कभी टैनिंग वगैरह हो जाए तो जो योगर्ट के पार्टिकल्स हैं वो भी इंस्टेंटली आपकी टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो साथ आपने लेना है कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है। सो अब हो गया 2 टेबलस्पून बेसन, साथ ही साथ 3 to 4 टेबलस्पून मिल्क, 1 टेबलस्पून योगर्ट एंड 1 टेबलस्पून कॉफ़ी। और साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी अगर तो इजीली आपको मिल जाए, लेकिन जस्ट इन केस नहीं मिलती तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। वैसे जिन लोग इस

रहेगा कि आप इसे मंडे यूज करें, मंडे के बाद आप यूज करें इसे वेनेसडे, वेनेसडे के बाद आप इसे यूज करें फ्राइडे, एंड देन फिर आ जाता है वीकेंड। और आई नो वीकेंड में आपको फैमिली को टाइम देना होता है, और वीकेंड पे ये भी होता है कि सब घर वाले साथ होते हैं तो उनके साथ ही इंसान लगा रहता है, कहाँ टाइम मिलता है कि वो स्किन केयर करे। सो इस तरह से आपने इसको वीक में 2 to 3 times यूज़ करना है, आपने इसे अच्छे से फेस पर लगाना है, लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, और जैसे ही ये ड्राई हो जाए तो आपने हल्का सा मसाज करते करते इसे रिमूव करना है। और पहली 2 एप्लीकेशंस के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट जो थी वो अच्छी हो चुकी है, हल्की सी टैनिंग भी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। सो ये था आज का हमारा फर्स्ट DIY ब्यूटी मास्क। सो लाजमी ट्राई कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे रिजल्ट्स बताइएगा कि आपको ये मास्क कैसा लगा, क्या आपको भी ये इफेक्टिव लगा या नहीं। सो लाजमी शेयर करिएगा। और वैसे भी कोई भी चीज़ है, जब तक आप उसे कंसिस्टेंसी से नहीं यूज़ करेंगे तब तक आप उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो इसको आपने कंसिस्टेंसी से यूज़ करना है। ये तो हो गए स्किन की बात कि किस तरह से आप स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि इस बदलते मौसम में आपके बाल भी काफ़ी हद तक हो जाते हैं डैमेज। जैसा कि मोस्टली क्या होता है कि जब समर्स होते हैं, समर्स में हम डेली बेसिस पर शावर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रीजी, और स्प्लिट एंड्स भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि हम कंडीशनर यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हम यूज़ करते हैं हेयर मास्क, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरली होती हैं। सो ये बहुत कॉमन है कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो बाल ड्राई हो जाते हैं। लवली डिवास, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके बालों के लिए भी है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन। सो सबसे पहले अगर हम हेयर केयर रूटीन की बात करें तो सबसे पहले जस्ट फ्यू थिंग्स हैं जिन्हें फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इनको फिक्स नहीं करेंगे, आप कोई भी मास्क यूज़ कर लें, कुछ भी अप्लाई कर लें, आपके बाल डल रहेंगे, ड्राई रहेंगे, फ्रिजी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी हेयर टाइप क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हेयर टाइप कुछ और होती है और वो उस पर कुछ और अप्लाई करते रहते हैं, जैसे कि जस्ट इन अ केस कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं, उनको लगता है कि मे बी सम हाउ अच्छा शैम्पू ना यूज़ करने की वजह से या फिर केमिकल्स की वजह से ऐसे हैं। नहीं, उनके बाल नेचुरली वेवी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, स्ट्रेट हेयर केयर रूटीन यूज़ करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक बाल डैमेज हो जाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नेचुरली खूबसूरत लगें तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें आपकी हेयर रूटीन क्या है, हेयर टाइप क्या है, जस्ट सिंपल स्ट्रेट हैं, वेवी हैं, या फिर हैं कर्ल्स। सो जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी हेयर टाइप क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करने हैं प्रोडक्ट्स। वैसे जो बेस्ट प्रोडक्ट जो कि मैं आप सभी को रिकमेंड कर सकती हूँ वो ये है कि आप कोई सभी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई सभी शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क, बट जस्ट कीप इन माइंड कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सल्फेट फ्री होना चाहिए। सो हमेशा से सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ किया करें, क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके बालों में नमी को लॉक करता है और आपके बालों को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। सो मोस्टली शैम्पूज ऐसे हैं मार्केट में जिनमें है सल्फेट। सो सल्फेट क्या करता है, वो बालों को बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देता है और बाल फिर फ्रीजी फ्रीजी लगते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे दिखें तो सबसे पहले आपको फिक्स करना है अपना शैम्पू। शैम्पू के बाद अब आ जाती है द सेकेंड थिंग। सो द सेकेंड थिंग इज कि आपने अच्छी सी हेयर ऑयलिंग करनी है। सो जो हेयर ऑयल मैं आप सभी को रिकमेंड करने जा रही हूँ, इट्स कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर आप वीक में 1 to 2 times इससे हेयर मसाज कर लेते हैं तो यू विल सी द रिजल्ट्स के बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, और जितनी भी फ्रिजनेस आ गई है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोकोनट है टोटली ऑर्गेनिक, सो अगर आप चाहते हैं कि बाल खूबसूरत दिखें तो सबसे पहले शैम्पू चेंज करें। शैम्पू की सेकेंडली आपको चेंज करना है ऑयल। ऑयल के बाद आप आ जाती है एक अच्छे से हेयर मास्क की जानेब।

सो आज मैं आपको एक ऐसी वेजिटेबल बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो होती है बट वो हेयर केयर रूटीन में भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आज हम बात कर रहे हैं एक DIY हेयर मास्क की जो कि बनेगा भिंडी से। सो आप सभी ने भिंडी खाई होगी और बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगी। मैंने बहुत ही कम सुना है कि लोग कहें कि उनको भिंडी नहीं पसंद। मोस्टली लोगों को भिंडी बहुत पसंद होती है। सो अब आपने क्या करना है, भिंडी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, ठीक है, वाटर के साथ। जैसे ही वो बॉईल हो जाए तो एक्सेस जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है आप उसको रिमूव कर दें। एंड देन आपने उसमें शामिल करना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। सो अब आपने भिंडी के पेस्ट और एलोवेरा जेल को दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है और बना लेना है एक पेस्ट।

सुबह शाम आपने इसे अच्छे से फ्रीज करके रूम टेम्परेचर में रख देना है, और जब भी आप शावर लेने लगें, सो शावर लेने से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले आप इस मास्क को अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर ले, हेयर की टिप्स में, रूट्स में, हर जगह आपने इसे अप्लाई करना है, और फिर इसे छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए।

सो जब आप एक से दो मरतबा इसे अप्लाई करेंगे बालों में, यू विल सी कि आपके बाल नेचुरली बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे. सो ये थी हमारी आज की दो अदद ब्यूटी टिप्स, एक स्किन से रिलेटेड और दूसरी बालों से रिलेटेड. एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होंगी. और इस तरह के मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि DIY मास्क मैं आपसे शेयर करूँ, सो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं. और द मेन थिंग इज़ कि इन मास्क को हमारी डिवाज ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे मेल लिसनर्स हैं आप ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी उतने ही सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आपके भी बाल उतने ही ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं. सो अभी सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, एंड ट्रैक के उस पार मैं आपसे शेयर करूँगी एक और बहुत ही अच्छी सी ब्यूटी रेमेडी.

वेल लिसनर्स, अभी आपसे शेयर करती हूँ एक बहुत ही अच्छा सा DIY मास्क फॉर योर आईज। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्किन की, हेयर्स की, तो फिर हमारी आईज को भी ज़रूरत होती है स्किन केयर की। सो आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इवन के स्किन पर रिंकल्स भी आ जाते हैं। सो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी एक दो ऐसी नेचुरल रेमेडीज जिनको यूज करके आप अपने डार्क सर्कल्स को कर सकते हैं बहुत कम। साथ ही साथ जस्ट इन केस अगर आपके फेस पे हैं ओपन पोर्स तो उनको भी लॉक कर सकते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप स्किन के ओपन पोर्स को लॉक कर सकते हैं। सो जस्ट इन केस आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो रहा है और साथ ही साथ आपकी स्किन में बहुत सारे ओपन पोर्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली यूज़ करना है बनाना। अब आपने किस तरह से यूज़ करना है कि जब आप बनानास खा लेते हैं तो उनके जो छिलके बच जाते हैं, सिंपली उनको लेकर आपने अपने फेस पर अच्छे से रब कर लेना है और यू विल सी के बनानास में ऐसे एंटीऑक्सीडाइज होते हैं जो कि नेचुरली आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, इवन के पोर्स को लॉक करते हैं और स्किन के बैरियर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। सो ये तो होगी एक ब्यूटी टिप जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं कि किस तरह से डार्क सर्कल्स को दूर किया जा सकता है। सो डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए आपने यूज़ करना है टी पैक्स। अब आप यूज़ सोच रहे होगे कि टी बैग से क्या होगा। सो आप जब भी कभी टी बैग यूज़ करते हैं, चाय बनाते हैं, सो होता है ना कि अक्सर हमारे टी बैग जो बच जाते हैं और हम उनको वेस्ट करने लगते हैं। सो आपने उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, उनको आपने अपने फेस पे जब भी आप मास्क अप्लाई करें तो साथ ही आईज़ पे आप टी बैग रख दें और 10 से 15 मिनट रखें और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते चले जाएंगे, आपको फील होगा कि जो डार्क सर्कल्स हैं वो अब काफ़ी हद तक लाइट होते चले जा रहे हैं। वैसे मैंने देखा है कि कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि जेनेटिकली ही डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जस्ट इन केस आपने अपने स्क्रीन टाइम की वजह से आपकी आँखों में डार्क सर्कल्स क्रिएट कर लिए हैं तो वो टी बैग की मदद से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। सो लिसनर्स, ये थी कुछ ब्यूटी टिप्स जो कि मैंने सोचा कि अपनी सभी डिवाइस के साथ शेयर करूं, क्योंकि डेली बेसिस पर मुझे इन तमाम तरह प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो मैंने सोचा कि जिन प्रॉब्लम्स को मैं फेस करती हूं, मोस्ट प्रोबेबली सभी डिवाइस भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करती होंगी। सो वेल लाजमी इन ब्यूटी रेमेडीज़ को ट्राई कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इन सब में से कौन सी ब्यूटी टिप आपको अच्छी लगी और क्या रिज़ल्ट आए आपके ऊपर, और फीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो 01157100971 है आपका और मेरा रबते का नंबर। सो इस समय के तुम मुझे लाजमी बताइएगा और इसी के साथ ही टीवर डायलॉग का ये जो सफ़र है हुआ जाता है इख्तिताम पजीर। सो वेल लिसनर्स, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी नई गॉसिप्स के साथ। सो बहुत सारी चटपटी सी मज़े मज़े की बातें करेंगे कल हम और आप मिलकर। फिलहाल के लिए मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज। और जाते जाते मैं आप सभी के लिए प्ले करती चलती हूँ ये खूबसूरत सा वीकेंड सॉन्ग। सो मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक एंड देन सी यू। अल्लाह हाफिज़।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपनी आवाज़ भी सुना दी जाए, ताकि आप ये ना कहें कि सलराज पता नहीं कहाँ चली गई है। बट प्रोग्राम में खूबसूरत सा मैसेज जो है वो सबसे पहला शामिल होने वाला है, और मुझे बड़ा खूबसूरत सा मैसेज रिसीव हुआ है। जब आप मतलब एक अच्छी बात है और इस पर हम डिस्कस भी कर सकते हैं, जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपको वापसी में अच्छा ही मिलता है। देर सवेर ज़रूर हो सकती है, लेकिन मिलता ज़रूर है, और यही जो है ना वो कुदरत का कानून भी है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, देर सवेर हो जाती है। और जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो बदले में आपके साथ भी अच्छा होता है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के हक में दुआ करते हैं तो वो, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो पहले आपके हक में कबूल होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ पर मोहब्बत देनी पड़े वहाँ पर दे दे, जहाँ पर आपको लगे कि आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट से अगले इंसान को खुशी मिल रही है, अगला इंसान अपने दिन को और ज़्यादा अच्छे से महसूस करने लग गया, तो इसमें कोई गर्ज नहीं है। आप दूसरों के लिए भी खुश रहना सीख सकते हैं, दूसरों के लिए भी खुश रह सकते हैं। हर जगह अपनी खुशी ही जो है वो नहीं रखी जाती। और जब आप किसी का ख्याल रखते हैं ना, तो बदले में आपके साथ भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला जो है वो, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब मैं अब एक चीज़ ये देखी जाए ना, कि अब वो कहते हैं ना कि बुरा, माँ मेरी हमेशा एक ही बात कहती है कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा कौन करेगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। अक्सर बुरा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो दूसरों के साथ अच्छे से रहते हैं, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। क्योंकि आजकल जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई, और हम पहचान ही नहीं पाते कि सामने बैठा इंसान हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है। इस चीज़ का कभी भी आइडिया हम नहीं लगा सकते। हाँ, हम लोग, वो लोग तो बिल्कुल नहीं लगा सकते जो एक खुश मिजाज इंसान होगा ना, जो एक मुस्कुराहट से जो है वो दिल हार जाने वाली बात जो होती है ना, वो वाला इंसान, वो तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता। और रही बात हम मुझ जैसे मासूम लोगों की, तो मैं तो रही मासूम लड़की, तो मुझे तो वाकई जाना बंदे पर बंदों की पहचान नहीं है। मतलब मैं बंदों को परख नहीं सकती। इसी तरह ना, मतलब वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कैसा तजुर्बा होना चाहिए जिससे आप दूसरों को परख भी सकें, दूसरों का अंदाज़ा भी लगा सकें कि आपके साथ बात करने वाला, आपके साथ रहने वाला शख्स कैसा है। इस चीज़ का अंदाज़ा जो है ना बहुत बहुत कम लोगों को लगाना आता है। और मेरे ख्याल में अगर आपको ये चीज़ अपने अंदर नज़र आती है कि आप दूसरों का मुआयना लगा सकते हैं, आप दूसरों को, अगर यही बात आ गई ना कि अगर ये अब किसी इंसान में होता, अगर ये सब इंसानों में होना, तो कोई भी किसी इंसान से धोखा नहीं खा सकता। लेकिन हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि सामने बैठा हुआ इंसान हमारा दोस्त है कि हमारा दुश्मन है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। जिनके साथ बंदा अच्छे से बर्ताव करे, जिनके साथ बंदा अच्छे से रहे ना, वही जो है ना वो एंड दी एंड आपके साथ आके ऐसा मोमेंट क्रिएट कर देते हैं कि आपको आइडिया भी नहीं होता कि कुछ ऐसा भी होना था या कुछ ऐसा हो जाना था। ये कभी उस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं होगा। मैं यही कहती हूँ कि मुझ में जो है ना बंदे परखने का जो है ना वो उस तरह का एक सलाहियत नहीं है, और मुझे इस चीज़ का नुकसान भी बहुत होता है। मैं एक तो हूँ भी कुछ इस तरह से कि अगले इंसान के साथ अगर कोई हंस के बात करता है तो दिलो जान उस पर कुर्बान कर देने वाली लड़की हूँ, और ये चीज़ मुझे नुकसान भी बहुत देती है। मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता हो कि मतलब अब दो पर्सन आपस में एक रिलेशन में, किसी भी तरह का रिलेशन हो, दोस्ती का हो, बहन भाई का हो, कजिन्स का हो, जो भी हो, एक इंसान को पता होता है कि देख अगले वाला इंसान जो है ना वो धोखा ही दे रहा, फिर भी हम उस चीज़ को खाए जाते हैं। बट हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम जो है ना उस चीज़ को लेकर चलते रहते हैं, और हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं रहता कि हमारी आने वाली ज़िंदगी में जो है ना किस तरह का बुरा असर पड़ सकता है। और मैं भी कुछ इस तरह से ही हूँ। अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम में एक और छोटे से ट्रैक की फरमाइश पर पसंद पहुंची है, बट उसको प्ले करेंगे। प्रोग्राम में जो है इसी तरह के मेरे ख्याल से रैंडम टॉपिक जो है वो शामिल करवाते हैं। आज जो मेरे पास छोटे छोटे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर उन्हीं के हवाले से जो छोटी मोटी डिस्कस आपके साथ शेयर कर सकूँ वो भी आपके साथ करती रहूँगी।
बस इस इसका ख्याल रखे कि जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उनको परखने का अंदाज, उनको परखने की सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए। सो अभी के लिए जो है वो एक और छोटी सी आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी, पर उससे पहले जो इतना बता देते हैं कि ये ट्रैक जो प्ले करवाया जा रहा है, ये हमें बड़ी खूबसूरती हमारे लिसनर है, हमें पाकिस्तान से सुन रही है, कराची से। सानिया हमेशा की तरह हमारा साथ देते हुए इस खूबसूरत से प्रोग्राम में आपका बेहद स्वागत करते हैं, मतलब वेलकम करते हैं, और उन्होंने फरमाइश की इस ट्रैक की, और मेरे ख्याल से जिस तरह का मैंने ट्रैक प्ले किया अभी प्रोग्राम का गाज़ इस ट्रैक से किया, उसी से मिलता जुलता कुछ ट्रैक जो प्रोग्राम में अभी मैं शामिल करने वाली हूँ, और आप सुनेंगे तो आपको पसंद भी आएगा। मतलब वही ना वाइब मैच होने लग जाती है जब आप को मैं शुरू में कोई ट्रैक सुना देती हूँ ना, उसी तरह के ट्रैक जो है प्ले करने का दिल करता है, उसी तरह के ट्रैक पर सुनने का भी दिल करता है। सवाल अभी के लिए फरमाइश के प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, क्योंकि मेरे आपके दरमियान कुछ ही मिनट बाद जो है एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाएगा, और फिर कमर्शियल ब्रेक अगर बीच में आ गई तो फिर वो ट्रैक सुनने का मज़ा भी नहीं आना। सवाल आइए सुनते हैं इस ट्रैक, उस ट्रैक उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप, मिलते हैं इस खूबसूरती आवाज़ के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24H.

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के राज स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सरराज की। सब उसी के साथ साथ प्रोग्राम में ट्रैक शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना बीच में आके उन चंद मैसेजेस को भी शामिल कर दिया जो जम्मू तक पहुंचे हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात है कि ये आरजी जिंदगी दर हकीकत आपके अहलाक का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान का सबसे बड़ा मैदान आपका अपना घर है। जो चीज़ घर से सीखी जाती है वही बढ़ जा के पता चलती है, तभी कहा जाता है, वो कहते हैं ना तरबियत की बात आ जाती है, तभी कहा जाता है कि इसकी तरबियत ऐसी है या वैसी है। बट तरबियत पे किसी की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ जो है वो कोई भी माँ पे बच्चों की तरबियत बुरी नहीं करेगी। लेकिन एक बात बनाई गई है कि इंसान की तरबियत का पता तभी चलता है, अहलाक का उसके घर से शुरू होता है। जब आपको घर से अच्छी बातें समझाई जाएंगी, घर से बताया जाएगा कि किस तरह से सबके साथ बात करनी है, सो इस चीज़ का आपको इल्म होगा, इस चीज़ का आपको होगा कि आपने किस तरह से उस चीज़ को लेकर चलना है। नफ्स वो किताब है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक साथ रहती है जब तक गलत काम करवा ना ले। और ये इंसान का अपना कंट्रोल अपने आप पे होता है कि वो गलत काम की तरफ क्यों ही जाए। अगर उसका नफ्स कमज़ोर है तो वो गलत काम की तरफ खुद बहुत जाएगा। और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये फिर उसके बाद एहसास भी होता है कि नहीं, ये चीज़ गलत हो गया या होनी नहीं चाहिए थी। बट गलतियों से ही इंसान सीखता है।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज़, आप सुन रहे हैं सलोराज की सुरुसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटी सी फरमाइश को शामिल किया था और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा ये ट्रैक और रूपोश मूवी में से लिया गया ट्रैक।

सर आइए इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक को एंजॉय करते हैं, इसके सवारे की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप। मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज ऑफ फिनेंस और आज की सोलसी के साथ साथ अभी जो है ना मेरे पास एक और खूबसूरत ट्रैक की फरमाइश जान पहुंची है, तो मेरी कोशिश ये है कि क्यों ना उसको भी पूरा कर दिया जाए, क्योंकि फिर ये ना हो कि आपकी फरमाइशें बीच में आधी अधूरी रह जाए, मुझे अच्छा भी ना लगे। ये सुनते हैं बोल कफारा क्या होगा। स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप। हाँ, किसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और अभी इस ट्रैक को सुनेंगे और साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम संतरी समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में कुछ चंद ट्रैक शामिल किए गए हैं, यानी कि मैशअप शामिल किया गया है। और इसके उस पर रही आपसे मुलाकात, अभी जो मेरे पास ये बड़े खूबसूरत खूबसूरत से मैसेज रिसीव हुए हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए। साथ साथ आप ट्रैक भी सुनते रहें और साथ साथ आप हमें भी सुनते रहें, यानी कि बैकग्राउंड BGM जो है वो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बड़ी खूबसूरत सी बात है कि बातें कम और काम ज़्यादा करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। दिस इज़ राइट, वेरी राइट। सख्त आदमी से नरम लहजे का रवैये की उम्मीद रखना ये जो है वो एक फजूल काम है। और झूठे के मुंह से सच निकलना ये भी एक फजूल बात है। और फजूल बातों की बात की जाए तो जल्दबाजी से हौसले की उम्मीद करना ये भी फजूल बात है। शकी इंसान से भरोसे की उम्मीद कर रखना ये भी जो है वो फजूल बात है। कामचोर से मोहब्बत की तौफीक, कामचोर से मेहनत की सॉरी तौफीक रखना ये भी जो है वो गलत बात है। अच्छा, मैं आगे इसको रीड करी थी तो मुझे शायद नज़र नहीं था रहा, तो मैंने उस पढ़ा नहीं, मैंने मोहब्बत पढ़ दी तो मैंने समझा सोचा कि यार कामचोर से मोहब्बत का क्या मतलब रिश्ता होगा, कामचोर से तो मेहनत का होगा। तो मैंने अभी गौर से देखा ना तो मेहनत लिखा हुआ था। ज़ालिम इंसान से रहम की उम्मीद रखना ये भी फजूल बात है। और धोखेबाज से जो धोखेबाज की बातों पर एतबार करना ये भी बहुत फजूल बात है। जिसकी कामयाबी को लोग रोक नहीं पाते ना, उसको फिर बदनाम करना शुरू कर देते हैं। सो वही बात आ गई ना कि मुझे किसी ने बोला था कि जब कोई बराबरी नहीं कर सकता तो मुहालफत पे उतर आता है। अवल ये चंद मैसेज से प्रोग्राम में शामिल करवाए मैंने। कोशिश ये करें कि दूसरों का ख्याल रखें, हमेशा मैं ये कहती हूँ। और हमेशा मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप दूसरों का ख्याल ही रखें। वल अभी जो हमारे दरमियान वक्त हो जाता है, समय हो जाता है, वो एक छोटी सी फरमाइश का भी है। लेकिन उससे पहले जो है वो ये बता देते हैं कि प्रोग्राम में जो है ना शामिल होकर कोई ट्रैक शामिल करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं, या फिर कोई ट्रैक किसी फेयर को डेडिकेट करना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है म्यूज़िक का, और मैंने अपना लास्ट सेगमेंट रखा ही होता म्यूज़िक है, तो वो म्यूज़िक जो उसमें आपकी फरमाइशों को मैं पूरा कर देती हूँ। बाकी जो है उस तरह से मैं आपकी फरमाइशों को पूरा नहीं कर पाती, लेकिन इसीलिए मैंने लास्ट सेगमेंट जो रखा होता ना वो मैंने म्यूज़िक का रखा होता है, ताकि आपके साथ अपनी बातें भी शेयर की जाएँ और म्यूज़िक ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने दरमियान शामिल किया जाए। अभी मेरे पास बड़ी खूबसूरत सी फरमाइश है और मेरी कोशिश है कि इसको प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए और आपको पसंद भी आएगा। बहुत मज़े का ये ट्रैक है। और वही बात आ गई कि मेरी और मेरे लिस्टर्स की फरमाइशें काफ़ी मिलती जुलती होती हैं। वाला ये सुनते हैं इस ट्रैक उस बारे की आपसे मुलाकात में भी, शायद इसके दरमियान मेरा दरमियान हाई लुक, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, फिर ब्रेक के उस बारे की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैप। मिलते हैं इस ट्रैक और ब्रेक के उस बार।

0: जवां है।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.

0: वाली दा नवा खट्टा किन्ने खोलिया है?
1: अन्ने हम इस घर का इकलौता दामाद है।
2: ओ फिकर ना कर छन्नो, ले फिर गुजराती तड़का।
3: इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा।
0: नजाकत को दवाइयाँ दे आओ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक है।
0: हाय अभी अब्बा जी जिंदा होते ना बहुत खुश होते।
4: सारे मैं
0: वेरी गुड। मेरे सामने

स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार्ट से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी है। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपको।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सरोराज की। सवाल दिल दिया गला करा के नाल ना, लेकिन अभी मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश अपने लिए भी है, यानी कि अपनी पसंद का एक ट्रैक शामिल करना चाहती हूँ और उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद भी आएगा। खुदार मोहब्बत ड्रामे को ओएसटी शामिल कर चुकी हूँ आपके अपने दरमियान। मिलते हैं इस खूबसूरत की आवाज़ के उस पार, इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पार। बड़े से पहले बता देते हैं जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 97.1 को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। रेडियो फजल को ट्यून करने का प्लस चूज करने के प्रोग्राम में शामिल होकर अपने म्यूजिक का एहसास भी दिला सकते हैं। तरीकाकार है 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। वाला ही सुनते हैं स्ट्रैकर्स, स्ट्रैकर्स पर है आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

आज का आपसे सवाल है, अगर आज आपको अपनी जिंदगी में एक चीज बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी? अपनी राय हमें जरूर भेजिए। आपके खूबसूरत पैगामात और आरा हमारे प्रोग्राम की रौनक है। हमें पैगाम भेजने के लिए आप लाइव कॉल कर सकते हैं 0115-7100971 पे। मैसेज कीजिए इसी नंबर पे अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ। सुनते रहिए फजा 97.1 FM। अब वक्त है एक बेहतरीन गाने का।

ब्रेक पे जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो अभी सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे लिखिए रेडियो फजा FM 97.1, फॉलो बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी हर आने वाली नई वीडियो से लुत्फंदोज होइए। प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आप रेडियो फजा का मुकम्मल चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। FM 97.1 के तमाम लिसनर को

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

माँ के लिए, माँ के नाम एक गाना सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि रेडियो फजा आपका अपना रेडियो है उस्मान साहिब की एक ख्वाहिश के मुताबिक।

आप सुन रहे थे माँ के बारे में खूबसूरत नगमा। खुदा करे जिनकी माएँ जिंदा हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई है अल्लाह उनकी कामिल मगफिरत फरमाए। आज हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा उस्ताद, बुजुर्ग या वो दोस्त है जिसकी एक नसीहत आज भी आपके साथ है। अपने जवाब हमें भेजिए, बेहतरीन जवाब हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। जवाब भेजने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0115-7100-971। मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, और अपना पैगाम लिखिए। रिमिक्स की तरफ दोबारा चलेंगे, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

फजा 97.1 FM आपकी फरमाइशों को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए आपके पसंदीदा सॉन्ग्स को, आपके पैगामात को आपके साथ शेयर कर रहा है, इसलिए सुनते रहिए फजा 97.1 FM। यहाँ एक वक्त हुए एक फरमाइश का, सुनिएगा और सुनते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नॉटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

याद रखिए कि बुजदिल अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं और बहादुर मौत का मजा एक बार ही चखते हैं। बहादुर बनिए, मौत से ना डरिए। नाइन्टीज के गानों की तरफ चलते हैं। फजा 97.1 FM आपको इंजॉय करा रहा है। आज से 20 बरस कबल के कुछ गाने

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715222

दूसरों की कामयाबी देखकर हसद न करें, बल्कि ये सोचें कि अगर अल्लाह ने उन्हें दिया है तो वो आपको भी दे सकता है। हर इंसान का वक्त मुख्तलिफ होता है, इसलिए मायूसी कभी भी कामयाबी का रास्ता नहीं बन सकती। और अब दोस्तों वक्त हो गया एक और खूबसूरत नगमे का, लेकिन इसके बाद हम लेकर आएंगे एक दिलचस्प पहचानी आवाज सेगमेंट, जिसमें आपको एक मशहूर शख्सियत की आवाज़ जुमला सुनाया जाएगा और सही जवाब देने वाले सामीन के नाम प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा FM 97.1 और मैं हूँ आपका मेजबान ज़ैफ़ा हैदर। मौसीकी से लुत्फ़ उठाइए, हम अभी हाजिर होते हैं।

tough. Feel it, feel it, feel it for you.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: तू जज कर दे।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Maria Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Maria's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Maria Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Maria Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot-tapping music.
14: 97.1 FM.
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
16: You are listening 97.1 FM.

0: विखा तेरा।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: To stay contact 07440016816 address 35 Lenton Boulevard, Lenton, Nottingham, ND72ET.
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਦੂਆਂ ਦਾ

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजान 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: It's
7: music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
3: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक.
4: फजान 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: सब है मयस।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

तेरे जिस पागल नाल की दसां की होई मैं जदों दा तेनूं जानदा मैनू ना जाने कोई जानिया जावा नाम तेरे तो पहचान मैं अपनी खोई मैं जदों दा तेनूं जानदा मैनू ना जाने कोई।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: पेशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ।
7: You are listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.